0: एनीवन या
1: ठीक है yeah. मतलब जैसा इधर अपने इधर मे का टाइम आ जाता है ना तो सब लोग बोलते हैं यार आम आएंगे अभी अभी आम आएंगे अभी आम आएंगे
0: लेकिन आते बहुत लेट है
1: कभी भी आए मतलब लोगों का अभी से ही चालू रहता है
0: Of course, क्यों नहीं रहेगा यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर फ्रूट्स इन द वर्ल्ड
1: ऐसा नहीं है
0: सॉर्ट मुझे मैंगोज ओके इंडियन मैंगोज
1: नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा नहीं
0: नो नो नो नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इन ओके इंडियन मैंगोज आर सॉर्ट आफ्टर इन द वर्ल्ड
1: श्योर ओके
0: ओके
1: ओके
0: तो इंडिया में क्योंकि बहुत वैसे तो अभी हर सीजन में आपको आम मिलता है मतलब स्टोरेज का पर जो टेस्ट है ना और खासकर वो कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जो कुछ दिनों के लिए आती है मतलब आपके पास मार्केट में वो 15 या 20 दिन के लिए होगी या 1 महीने के लिए छोटे छोटे आम आते हैं इतने एक उंगली के साइज का आम आते हैं वो छोटे उंगली से थोड़े से बड़े होंगे शायद वो मोटे मोटे होते हैं और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है और वो बारिश में आते हैं जब सीजन खत्म हो रहा होता है बट यू नो वी यूज टू वेट फॉर दैट तो हम हर चीज पहले हम वेट करते थे अभी ये आएगा एक आम होता है उसका नाम होता है सफेदा वो आएगा वो थोड़ा सा हल्का हल्का वाइट होता है बड़ा वाला होता है बड़ा वाला मैंगो वो ठीक लगता है नॉर्मल खा लेते हैं फिर उसके बाद आता है दशहरी जो मेरा फेवरेट है इट इज वेरी स्वीट और टेस्टी होता है उसको चूस के खाते हैं फिर आते हैं चौसा ग्रीन कलर का आम होता है वो और वो भी खाते हैं बहुत ऐसे काट के या फिर
1: लंगड़ा होता है
0: एक लंगड़ा होता है
1: एक
0: तोता पाए होता है और एक ये होता है ये छोटा वाला क्या बोलते हैं उसको जो इतना आम होता है
1: वो नहीं पता हूँ
0: तोता पाए इज लाइक उसका शेप बहुत अलग सा होता है ना
1: उसका जो शेंडी होता
0: है शेंडी
1: वो तोते की चोंच की तरह लगता है
0: हाँ हाँ
1: इसके लिए उसको तोता पाए
0: रत्नागिरी आता है केसर आता है कितने आम आते हैं एक्चुअली इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंगो वैरायटी in the world
1: okay
0: I'm not surprised
1: see even I like mangoes it's just that I am not that I don't fawn over mangoes
0: okay
1: koi mere ko khilayega I'll be very happy bola ha mast lagta hai khane ko bahut acha lagta hai but aisa nahi hai I'm not crazy behind it fan following nahi hai mera aisa aam ke liye
0: okay
1: ha
0: मराठी
1: में उसका हापुस बोलते ना तो मैं क्या करूँगा
0: मैंने कहीं देखा है किसी जगह पे
1: क्या
0: हापुस आम
1: हाँ दुकान पे हिंदी मराठी में ही लिखा रहा था हापुसाम हापुसाम्बा
0: ओके फिर
1: वैसे ऐसा पंजाबी में कुछ अदर मतलब कुछ और वर्ड है क्या आम के लिए
0: नहीं आम ही बोलते
1: हैं अच्छा ओके
0: और मराठी में
1: उसको आंबा बोलते हैं
0: आंबा तो हम कई बार उसे अम्मी ऐसे ना छोटी होती है तो अम्मी बोलते हैं बट ग्रीन वाले जो आम होते हैं ना अचार वाले जिसकी चटनी भी बनती है
1: उसको कैरी बोलते हैं
0: हम अम्मी बोलते हैं
1: उसको कैरी बोलते हैं
0: अच्छा हम अम्मी बोलते
1: हैं मराठी में उसको कैरी सॉरी हिंदी में उसको कैरी कहते हैं मराठी में उसको कैरी कहते हैं
0: कैरी
1: या
0: ओके नहीं हम लोग उसको पंजाबी में ऐसे ही बोल देते हैं अम्बी
1: ओके
0: तो कहने का मतलब ये है कि आम जैसी चीज अब जैसे मेनी पीपल दे गो टू वियतनाम एंड दे जस्ट लव द कोकोनट वाटर
1: इधर मिलता है बॉटल में
0: नहीं मिलता है पर वो फ्रेश पीने का मजा ही अलग है ना तो ऐसे आप जहां जाते हो वहां का फ्रूट खाओ देखो पता है मेरे को लीची खाए हुए कितने साल हो गए
1: हाँ इधर आई थिंक मैंने एक ही बार खाई है
0: अच्छा खाई है
1: हाँ वैसे ही इंडियन स्टोर में मिली थी अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कौन से स्टोर से इंडियन स्टोर से मिली थी ज्यादा नहीं ली थी मैंने थोड़ी सी ली थी और बस खा लिया और फिर
0: फ्रो

0: फ्रोजन मिली थी?
1: नहीं, फ्रेश।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तभी इंपोर्ट की थी। एंड मैं जब इंडिया गया था तभी मैंने खाया रहेगा। बस लीची का आइसक्रीम मेरे को पसंद है। ओके,
0: लीची का आइसक्रीम।
1: ओके, अभी वही बोलने वाला था मैं। ऑकलैंड में ना एक जगह है, अभी मैं वो स्ट्रीट का नाम भी भूल गया। वो स्ट्रीट का नाम मैं एक दुकान से याद रखता हूँ।
0: अच्छा।
1: देयर इज दैट फ्रोजन आइसक्रीम प्लेस व्हाटएवर, वो रात तक खुली रहती है।
0: ओके,
1: इसीलिए मेरे को पता है वहां पे लीची आइसक्रीम मिलती है और वो बहुत अच्छी बनाता है।
0: मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लेवर सुने हैं
1: वो मुझे... रोल आइसक्रीम।
0: अच्छा अच्छा, रोल, वो जो रोल करके
1: रोल करता
0: है। अच्छा अच्छा, आई गेट इट, आई गेट इट। मैंने एक चीज देखी है कि आजकल बड़े अलग अलग फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए हैं।
1: किस में?
0: आइसक्रीम्स में।
1: हाँ,
0: एक माचा, चलो माचा तो ठीक है, मतलब
1: हाँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ द आइसक्रीम्स दीस डेज इज नॉट आइसक्रीम।
0: अच्छा, इट इज,
1: इट इज फ्रोजन प्रोडक्ट।
0: ओके,
1: जैसे यच, ये जो रोलिंग आइसक्रीम जो है ना, इट्स नॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं है वो।
0: ठीक है,
1: इट इज फ्रूट पल्प, मे बी क्रीम या फिर दूध, एंड ऑल ऑफ दिस इज मैश्ड, बट इट इज डन ऑन अ कोल्ड सर्फेस।
0: ओके, हाँ, ताकि वो बार बार जम जाए।
1: हाँ, तो वो जो रादर देन दैट बिकमिंग अ स्मूदी, दैट बिकम्स फ्रोजन पार्ट दैट फील्स लाइक एन आइसक्रीम। होता वो स्मूदी है लेकिन आइसक्रीम नहीं होता वो, इसीलिए यू आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स। For anything to become an ice cream, you have to whip it so that उसके अंदर air ये हो जाए, amalgamate हो जाए।
0: Okay.
1: इसके लिए घुमाते हैं उसको, उसको time लगता है।
0: Time लगता है।
1: हाँ, लेकिन ये जो बाकी चीज होती है, it's not ice cream। जैसे gelato, gelato is not gelato। इसलिए gelato में आपको बहुत सारे flavors मिलते हैं।
0: मैं कभी गई नहीं जिलेटो।
1: अरे जगह नहीं है कोई,
0: मतलब मैंने कभी खाया नहीं जिलेटो।
1: हाँ, तो इसीलिए देयर आर अदर फ्लेवर्स।
0: ओके,
1: ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम में फ्लेवर्स नहीं है।
0: एक मैंने एक बार बहुत अजीब सा फ्लेवर खाया था, गुआवा आइसक्रीम।
1: ओके,
0: मुझे लगा, मैंने मंगवा तो ली, लगा यार मैं खा पाऊंगी क्या नहीं। एंड एक और चीज थी, गुआवा आइसक्रीम विद कोक सिरप। कोक होती है ना हमारी,
1: साउंड्स हॉरिबल
0: बट हमने खाई एंड इट वाज सरप्राइजिंगली टेस्टी।
1: टेल मी, ये दिल्ली में मिला था?
0: हाँ, तो
1: ओके, नहीं ठीक है, अच्छी बात है।
0: अरे टेस्टी थी,
1: आई एम श्योर, जैसे दूध सोडा भी टेस्टी होता है।
0: दूध सोडा, हाँ, लोग पीते
1: हैं,
0: लोग वो कोक सोडा पीते।
1: Which?
0: Okay, ठीक है, अभी
1: दूध कोक,
0: दूध कोक, वो कहते शक्ति आ जाएगी और ठंडक भी आएगी।
1: हाँ, शक्ति आएगी और ठंडक भी आएगी।
0: हाँ, अब बताओ कौन सा गाना सुना रहे हो
1: अभी? भिक्की कौशल का एक गाना है।
0: Okay, wow.
1: Bad News करके एक पिक्चर है।
0: Bad News, okay.
1: उसका गाना है जानम।
0: जानम। जानम देख लो।
1: नहीं, वो वीर जरा का गाना है, बहुत अच्छा गाना है।
0: नहीं, वो उतना अच्छा नहीं लगा रहे हम
1: नया कुछ
0: सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
1: ऑलराइट।
2: ना बन जा रहा हूं

0: तो ये गाना मतलब ठीक है, it was very slow.
1: I like the singer.
0: Who's the singer?
1: बहुत ट्रेंड में आजकल.
0: क्या नाम है?
1: विशाल मिश्रा.
0: Okay.
1: मुझे इसका आवाज अच्छा लगता है.
0: क्यों?
1: वो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाता है.
0: ओके, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग.
1: यप.
0: वाओ.
1: और मेरे को ऐसा लगता है.
0: तूने अभी तक कौन से उसके वो देखे हैं रिजल्ट, मतलब कौन से उसके ऐसे वो देखे हैं गाने?
1: देखे
0: मतलब सुने.
1: अच्छा, आवर बिलवेड रणवीर कपूर.
0: ओह माय गॉड.
1: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बल्ती पिक्चर आई थी.
0: बल्ती?
1: हाँ.
0: कौन सी?
1: एनिमल.
0: ओह या या, दैट वाज बल्ती. व्हाटएवर बल्ती इज.
1: सो एनिमल इज बल्ती.
0: सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाटएवर बल्ती इज, इट एक्चुअली साउंड्स कि इट इज एप्ट फॉर दैट मूवी.
1: उस पिक्चर में एक गाना, एक गाने का नाम है पहले भी मैं, रोमांटिक गाना है.
0: हाँ, पहले भी मैं. हाँ हाँ, याद है मुझे.
1: नाइस सॉन्ग.
0: अच्छा सॉन्ग है वो.
1: अच्छा गाना.
0: वो इन्होंने गाया?
1: या वो इन्होंने गाया.
0: अच्छा, विशाल
1: मिश्रा.
0: मिश्रा.
1: ओके. एंड देयर इज दिस वन सॉन्ग, मतलब नया गाना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, बट समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा. And I kept feeling that ये गाना अर्जुन कनुंगो, there is this artist, singer है, pop artist है, उसने गाया है.
0: अच्छा.
1: And I kept feeling कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, good. मतलब मेरे को पता नहीं था वो Bollywood में भी गाना गाता है. He is actually a वो अंग्रेजी गाने बनाता है, हिंदी भी गाता है, बट वेस्टर्न
0: में ज्यादा है.

0: तो मेरे को लगा था सही है ठीक है, बट नहीं, दैट सॉन्ग वॉज ऑल्सो और इज ऑल्सो संग बाय विशाल मिश्रा. सो विशाल मिश्रा रिमाइंड्स मी ऑफ अर्जुन एंड विशाल मिश्रा ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ एश किंग. बट जब ही आई लिसन टू विशाल मिश्रा आई लाइक लिसनिंग टू विशाल मिश्रा.
1: ओके, मतलब उसी के सॉन्ग सुनने का बार बार मन करता है.
0: नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा, इट्स जस्ट दैट लाइक आई सेड वो मॉड्यूलेट बहुत अच्छे से करता है. वो
1: एक एक वर्ड को समझता है.
0: ये बोलोगे आप? हाँ,
1: और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ, मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं, तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल.
0: या देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट मेनस्ट्रीम मूवीज या मूवी के गाने.
1: अरे हाँ, आजकल तो
0: नहीं, देयर इज दिस वन पर्टिकुलर थिंग. और ये ऐसा नहीं कि अभी सही हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई दैट इज, कि कोई एक अच्छा सिंगर है उससे गाने गवाएंगे, फिर उसी के गाने चलते रहते हैं. ठीक है, वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा, अलग टाइप के गाएगा, बट फॉर अ पीरियड ऑफ से 5, 7, 10, 12 ईयर्स बस उसी के गाने चलते रहते हैं. गाने बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता.
1: एग्जैक्टली.
0: एंड देन सडनली वो फिर बंद हो जाता. एंड देन सम सिंगर एंड सडनली
1: ही टेक्स अ ब्रेक. ना
0: नहीं, एंड देन सडनली अ न्यू सिंगर इज इन ट्रेंड नाउ. जैसे
1: आई डोंट नो,
0: अब जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वाज एवरीवेयर, ठीक है, उसके बाद में अरिजीत सिंह वाज एवरीवेयर.
1: यप,
0: ठीक है. अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, जितना पहले था. ठीक है, अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है. अभी तक आया नहीं है वहां पे,
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद.
0: एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द सिंगर्स,
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री. राइट. माय क्वॉम इज और ये मैं पहले बोल चुका हूं, माय क्वॉम इज मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स विद हिज एज, हिज सिंगिंग मैच्योर्स विद हिज एज.
1: आई वुड से द सेम फॉर एन एक्टर,
0: सेम फॉर एन एक्टर,
1: क्योंकि आर्टिस्ट हो ना आप.
0: राइट. तो
1: आपको सीखना पड़ता है, आपको ब्रेक लेना पड़ता है.
0: हाँ, अभी जैसे के ठीक है, वो जब भी आया था तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है, एंड देन टूवर्ड्स द पीक, मतलब एब्सोल्यूट पीक द इमरान हाशमी फेस, उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, दे आर वेरी डिफरेंट. बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड. पहले भी ऑफ कोर्स पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर. राइट.
1: और एक जो उसके श्रोता होते हैं, जो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं.
0: राइट.
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस.
0: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए थे.
1: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, ये नहीं पता है जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है. और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं. ऑन टॉप ऑफ माई हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर थी लकी.
1: हाँ हाँ, याद है मुझे.
0: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
1: लकी लिप्स, एक गाना भी था उसमें.
0: हाँ, तो उसमें एक गाना है
1: सुन जरा,
0: ठीक है, वो

0: दो सिंगर्स ने गाया है, एक सोनू निगम ने, ठीक है। तो पहले सोनू निगम का फेमस हुआ,
1: अच्छा
0: ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
1: भी गाया है।
0: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना।
1: ओके,
0: आई डोंट नेसेसरीली लिसन टू अदनान सामी सॉन्ग्स, वेरी टैलेंटेड सिंगर अगेन, बट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I prefer listening to the Adnan Sami version.
1: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे, बहुत पुराना ट्रेंड है,
0: हाँ,
1: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है, हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है।
0: तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे,
1: हाँ,
0: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे। Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
1: he should remain in the scene.
0: हाँ, he should remain, he should stay in the scene. Right. That is how, that is what my point is.
1: But no, they do stay in the scene. वो थोड़ा break लेते हैं।
0: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan? Tell me the
1: last. अभी हाँ, actually Mohit Chauhan, हाँ सही बोल।
0: Tell me where is Sonu Nigam?
1: Sonu Nigam, oh he has disappeared. That's correct.
0: वही तो मैं कह रहा हूँ। तो it is not the singers.
1: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था।
0: अभी भी अच्छा है। हाँ, अभी भी काफी अच्छा है।
1: हाँ,
0: अभी भी he is very talented.
1: तो
0: ऐसा नहीं बोल सकते अपन।
1: तो फिर आप हमें
0: दैट्स माय क्वेश्चन।
1: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं?
0: अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है।
1: 3 आ गई है?
0: हाँ, 3 आ गई है।
1: चलो
0: गुड, मतलब अभी नहीं है,
1: टाइम पास
0: हो गया उसको, टाइम हो गया अभी उसको।
1: अच्छा, टाइम भी हो गया?
0: हाँ, टाइम भी हो गया उसको।
1: गुड, टाइम
0: पास उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझोना।
1: समझोना, ओके सुना।
0: तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा।
1: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया।
0: हाँ, टाइम हो गया है। तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा। तो मनावाटू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस, और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
1: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के,
0: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए।
1: थैंक यू मल्हार जी, और थैंक यू मनावाटू। फिर मिलते हैं हम अगले हफ्ते।
0: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।